लेकर डेराइल बढ़न बातचीत से बिना होके माई खिंची छिल मुँह पर चांद लिखे ड्रामा देनी साउंड अंडरग्राउंड रिच लागे लागल पाँच दिन से वर्स में बाओपेन एंड अंडर कॉन्फिडेंट लाइकन के डिस लागे लागल का सीन में बाबन के वर्स मार मीट लागे लागल बनारस तक को लैब चमर चीट बाजे लागल बिहार से उठल ड्रीम इतना फील लिरिक्स में गीत लागे लागल हम पॉप कनी लाइफ नेचर बीट लागे लागल प्योर रिच फिलोसफी शरीर से निकले रोशनी संकेतवा नीक लागे लागल मिला पर्सनल संकेतवा बकचोद संकेतवा के खराब बा दिमाग छोट बा सोच शॉर्ट लिस्ट कर एल्कोहल गरजवा में बजे बीट लागे लागल इतना रियल थॉट पूरा नीट मार रहे पागल कौनो बर्फ के जरूरत नहीं है गौना शादी बिया कैसे के हमरा झेल ली कोई झेलस छः महीना कोई पुरौलस साल हमारे रिटेशन से बर्बाद हो गई लोकर जिंदगी में दाग माय बाप के एहसान की झेलन 25 साल एक क्राफ्ट लौड़ा माचुदाय तुर बीट बेस सब भाड़ में जाए हार्ट बीट बजे तेज कहरवा ताल हो गई धुआं धुआं पूरा गली मोहल्ला उदासी महसूस कर तू हवा में अपन माई बाप के साथ चलब का सीख के करब गला से का चीख के करब गला से तो हम सब जाना के माई के चौदोपुर में जाए भोजपुरी रैप हम तोर सोल्जर नहीं की केकरो भाई नहीं केकरो रख अपन सब पैसा पुर में हम चढ़ के देव गाड़ी मुँह पे रियल रियल छिकला सीन रियल हो गई तब तीख लागे लागल इस सब कट्टा तोहर छोड़ सीधा तीर मार रहे पागल नशा जिंदगी दिमाग मातल सजा ठीक लागे लागल कल छोड़ दे रही गांजा छोड़ दे रही म्यूजिक आज फिर बीट बजे लागल चार गो लेकर इंस्टा पे हमार लिरिक्स ताके लसन आत्मा के बा पोर्टल हमार फीलिंग जाके लसन गजल गीत लागे लागल सब कुछ नीक लागे लागल इतना रियल बात लेकर डेराइल बड़न बातचीत से आहा इतना रियल बात के लेकर डेराइल बड़न बातचीत से बेना होके माइक खींची चिलम ऊपर चांद लिखे ड्रामा देनी साउंड अंडरग्राउंड रिच लागे लागल पाँच दिन से इतना रियल बात लेकर डेराइल बड़न बातचीत से।

0: talking to me?
1: इतना रियल बात लेकर डराइल बड़न बातचीत से बिना होके माइक खींची चिल्ल मुंह पर चांद लिखे ड्रामा देनी साउंड अंडरग्राउंड रिच लागे लागल पांच तीन से वर्स में बाउप एन एंड अंडर कॉन्फिडेंट लाइकन के डिस लागे लागल का सीन में बाबन के वर्स मार मीट लागे लागल बनारस तक को लैब चमर चीट बाजे लागल बिहार से उठल ड्रीम इतना फील लिरिक्स में गीत लागे लागल हम पॉप कनी लाइफ नेचर बीट लागे लागल प्योर रिच फिलोसफी शरीर से निकले रोशनी संकेतवा नीक लागे लागल मिला पर्सनल संकेतवा बकचोद संकेतवा के खराब बा दिमाग छोट बा सोच शॉर्ट लिस्ट कर अल्कोहल गरजवा में बजे बीट लागे लागल इतना रियल थॉट पूरा नीट मार रहे पागल कौनो बर्फ के जरूरत नहीं है गौना शादी बिया कैसे के हमरा झेल ली कोई झेलस छः महीना कोई पुरौलस साल हमारे रिटेशन से बर्बाद हो गई लोकर जिंदगी में दाग माई बाप के एहसान की झेलन 25 साल एक क्राफ्ट लौड़ा माचुदा है तुरबीट पे सब भाड़ में जाए हार्ट बीट बजे तेज कहरवा ताल हो गई धुआं धुआं पूरा गली मोहल्ला उदासी महसूस कर तू हवा में अपन माई बाप के साथ चलब का सीख के करब गला से का चीख के करब गला से तो हम सब जाना के माई के चौदोपुर में जाए भोजपुरी रैप हम तोर सोल्जर नहीं की केकरो भाई नहीं केकरो रख अपन सब पैसा पुर में हम चढ़ के देव गाड़ी मुँह पे रियल रियल छिकला सीन रियल हो गई तीख लागे लागल इस सब कट्टा तोहर छोड़ सीधा तीर मार रहे पागल नशा जिंदगी दिमाग मातल सजा ठीक लागे लागल कल छोड़ देले रही गांजा छोड़ देले रही म्यूजिक आज फिर बीट बजे लागल चार गो लेकर इंस्टा पे हमार लिरिक्स ताके लसन आत्मा के बा पोर्टल हमार फीलिंग जाके लसन गजल गीत लागे लागल सब कुछ नीक लागे लागल इतना रियल बात लेकर डेराइल बड़न बातचीत से आहा इतना रियल बात के लेकर डेराइल बड़न बातचीत से बेना होके माइक खींची चिलम ऊपर चांद लिखे ड्रामा देनी साउंड अंडरग्राउंड रिच लागे लागल पांच तीन से इतना रियल बात लेकर डेराइल बड़न बातचीत से